0: Now we are cutting across to Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal speaking.
1: जिसके कारण सड़कें उड़के अभी ठीक नहीं है, जो कनेक्टिविटी का जरिया खुलता रहेगा, ये लोग जो है वहाँ 400 के लगभग में लोग जो मैंने बताया वो भारत वापस आ सकते हैं। जहाँ तक मानवीय सहायता की बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 तारीख को हमने पहला जहाज भेजा जिसमें कि 10 टन सामग्री, मानवीय सहायता सामग्री, कूलर, लैंप भी थी। उसके अलावे कल 27 तारीख को जहाज भेजा था जिसमें 37.5 टन मानवीय सहायता हम लोगों ने नेपाल को प्रदान किया था, और ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ की सरकार ने हमसे अनुरोध किया। और तीसरा जहाज भी आज जाने क्रम में है जिसके बारे में आपको हम अवगत कराएंगे जब वो ये कार्य पूरा हो जाएगा। और ऐसा मानना जा रहा है कि इस जहाज में करीबन 12 से 13 टन मानवीय सहायता इसके जरिए भेजा जा रहा है नेपाल। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो भी हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं हमारे भारतीय नागरिक को सुरक्षित करने के लिए, और वहाँ पर जो भी हो सकता है नेपाल को भी हम लोग जो सहायता प्रदान कर सकते हैं उनके अनुरोध के हिसाब से वो भी हम कर रहे हैं। तो ये था नेपाल के ऊपर। बाकी अब सवाल साहिल।
2: सो गुड आफ्टरनून, आई एम साहिल पांडे फ्रॉम ईएनआई न्यूज एजेंसी। सो वी आर सीइंग कंसिडरेबल असिस्टेंस बीइंग रेंडर्ड टू नेपाल, हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर स्टिल मिसिंग ऑफ फियर डेड। What is government of India doing about their situation, sir? If you can brief us on that, thank you.
1: Sir,
3: so there are reports that the Nepalese government has actually refused offers of assistance from many many countries. What is the position vis-a-vis India? Do we have a free hand in sort of rendering the relief efforts? And secondly, I just wanted to check this, would you have, you have mentioned the number of people who are non-contactable or missing, but what is there any sort of evidence of death toll of the Indians? Have any bodies been recovered or anything like that? Thanks.
1: Keshav.
4: Thank you for the print. Yesterday, the Sri Lankan government announced, I think, $1 million in aid to

0: नमस्ते सर, आपको रक्षाबंधन के हार्दिक
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सौभाग्य है मेरा यह भैया, तुम्हें पाकर धन्य हूँ मैं। तू परछाई बनकर साथ रहा यह भी जानती हूँ मैं। मेरे राह के कांटों को तूने अपनी ओर मोड़ लिया, जब जब टूटकर बिखरी हूँ तूने आकर फिर जोड़ दिया।
1: क्या लाई हुई?
3: Continuing the annual tradition, school girls visit the Prime Minister in an AD's official residence at 7 Lok Kalyan Marg, where they tie rakhis on his wrist. India's industrial output growth slows to 6%. Data shows as mining contracts in manufacturing and electricity

0: developed world are pretty empty, and employment rates have been falling. And that's one of the reasons we've seen an increase in populist governments. And AI is very much accelerating that. The big change, though, will happen when, and we don't know when, AI goes from things like large language models to what's called general intelligence. In other words, something that solves the sort of problems that we can solve.
1: SL Group Chairman Dr. Subhash Chandra has categorically disputed several figures and claims that have appeared in certain sections of media regarding the NCLT case. He has called it an attempt to tarnish his image and said that it is being done with purpose by some. Dr. Chandra said that reports suggesting that he had personally borrowed money and had guaranteed loans worth 22,000 crore rupees are incorrect. Listen into his message.
2: Namaskar. पिछले दो दिनों से मुझे यानी सुभाष चंद्रा को भी कुछ लोग इस देश के ऐसे लोगों से जोड़ के देख रहे हैं या दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को किसी न किसी प्रकार से निचोड़ा है, किसी न किसी प्रकार से उनके पैसे लेकर के स्वयं के लिए महल, जहाज सब कुछ खरीदे हैं। लेकिन मुझे पता है और मुझे विश्वास है, जो प्यार, जो शुभेच्छा आप सब लोगों ने मुझे दी है, उसके कारण से हमारे ग्रुप ने जो मुसीबत हम पर 24 जनवरी 2019 को आई, एसेट और लायबिलिटी मिसमैच होने के कारण, और उस दिन मैंने अपने मन से मेरे लोगों के कहने के बावजूद भी सब आप लोगों को लिखा, देश के सिस्टम लिखा, बैंकिंग सिस्टम को भी लिखा, और उसमें कहा मैंने कि मैंने कुछ गलतियां की हैं। शायद मैं पहला ही व्यक्ति था जिसने अपनी गलतियां मानी, मुझे नहीं लगता, और शायद आखिरी, अब तक के इतिहास में मैं ही अकेला व्यक्ति हूं जिसने अपनी गलतियां मानी हैं। दूसरा कोई कॉरपोरेट वाला व्यक्ति ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने गलती मानी हो। और मैंने कहा कि भाई मैं सिस्टम का पूरा पैसा चुकाऊंगा, और मेरे ग्रुप के जितनी बोरोइंग एंटिटीज हैं वो भी चुकाएंगे, और वो किया हम लोगों ने। वो मैंने सभी बोरोइंग एंटिटीज को थी, लगभग कुछ हमने रखा नहीं, अपने घर तक को गिरवी, लेकिन सबका पैसा चुकाया। बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक उदाहरण बन जाएगा कि एसएल ग्रुप ने, सुभाष चंद्रा और उसकी फैमिली ने सब कुछ सबका चुकाया, अपना बेच के भी चुकाया। उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा जिन्होंने नहीं चुकाया। तो तब से ही ये बातें चली आ रही हैं, और ये केवल अभी जो एनसीएलटी में हुआ उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको एक मिनट में, वो सच्चाई सही से नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। हमने कल एक प्रेस रिलीज इशू किया, उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं, लेकिन मैं सोचता था आपसे सीधी बात भी मैं करूं, आपको सीधा बताऊं, जिससे कि आप सबका जो प्रेम मेरे प्रति है वो बना रहे। और मुझे विश्वास है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मेरी जो रेपुटेशन है उसको जो लोग

0: बैंकिंग सिस्टम को, आज इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर को और बैंकिंग सेक्रेटरी इत्यादि को भी ये कहना चाहूँगा कि आप किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को लगाइए, उनको इतना ही सवाल पूछिए कि भाई इस ग्रुप का जब इन्होंने पहली बार फाइनेंशियल मार्केट में डिफॉल्ट किया उस समय कितना इनकी बोरोइंग थी और कितना इन्होंने अब तक पे किया। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आज आपसे ठीक हंस के साधारण रूप से बात कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की तरह से बात नहीं कर रहा जिसका सब कुछ चला गया हो, जो आखिरी 6.5 करोड़ रुपया बचा है मेरे पास वो भी अब इस प्लान के अनुसार पे करना पड़ेगा। एक मेरा छोटा रेजिडेंशियल मकान है उसको मैंने पार्टली भाड़े पे दिया, उसकी इनकम से मैं अपना खर्चा चला रहा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है दोस्तों। और फिर कमाऊँगा, पायनियर हूँ, अच्छे काम नए काम करना जानता हूँ, आगे भी करूँगा। अभी तो फिलहाल तो एक मैंने स्विट्जरलैंड में मेरे मित्र हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, आपको आने वाले एक दो उनकी इन्वेस्टमेंट भारत में और कहीं पे भी कुछ भी होगी तो वो देखूंगा, जिससे कि अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश कर सकूं। और आवश्यक ये भी है कि कहीं ना कहीं परिवार से 2-4 करोड़ रुपया उधार लेके उसको भी अपने किसी न किसी स्टार्टअप्स में और में लगाएंगे, जो कि आगे बढ़ सकें, आगे वापस अपना जो खोया हुआ अतीत, एक सक्सेसफुल पायनियर और जिसने नए नए बिजनेस इस देश में शुरू किए, 8,000 परिवारों को रोजगार दिया, इस देश की मुझे ध्यान में आता है ये 50-52 साल के मेरे वर्किंग लाइफ में मैंने कम से कम फाइनेंशियल सिस्टम को 60-70 हजार करोड़ का ब्याज दिया होगा, लेकिन कमाया भी, आगे भी बढ़े। जो व्यक्ति 17 रुपए लेके निकला, एक समय में इस देश का 1 of the richest top 10% में भी नाम आया, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। और आज सब कुछ चला गया, उसका कोई दुख नहीं है। तो मैं केवल और केवल आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी की बहकावे में मत आइए। गलत व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे दुनिया भर की बातें मेरे बारे में जो कही जा रही हैं उनको वेरीफाई करिए, और मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे, मेरा तो सब कुछ ओपन है, मुझे मेल करिए, आपके प्रश्न मेरे से पूछिए सीधा। मैं इसके साथ ही, आपने अपना अटेंशन मुझे दिया, मेरी इस वीडियो को, इस स्टेटमेंट को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, धन्यवाद, जय हिंद।
1: मूविंग ऑन, कैनेडियन पब्लिक ब्रॉडकास्टर CBC हैज रिपोर्टेडली एडवाइज

0: We were told that it was overflowing once again, and then there were reports that it is not so. It did not happen, in fact. So I don't know. There is definitely something happening there. There's definitely a possibility of another flood happening, but we have made sure that all our team members are moved away from that region.
1: We also asked her about the state of communication and connectivity in the region and if she has been able to stay in touch with her team and gather more information from across the region.
0: The region where we are now, yes, we are very well connected, but the region where this happened, there's no connectivity even now. Perhaps the communication is happening differently among the government bodies, but there's no connectivity as yet.
1: And lastly, we asked Ma Gambhiri if she has an appeal to make to the people, and this is what she had to say.
0: I think the Indian government has been very, very helpful. They have been providing us all the needed support as much as they can. My only appeal would be if we could get some information about this, our participants. We had 77 participants on the China side, and we had 3 on the Nepal side. And we have no information whatsoever on all of these 80 people. My only hope is that we would get some information soon because it's not just us. There are 80 families waiting on the other side.
1: Moving on, SL Group Chairman Dr. Subhash Chandra has categorically disputed several figures and claims that have appeared in certain sections of the media regarding the NCLT case. Now, he has called it an attempt to tarnish his image and said it is being done with purpose by some people. Dr. Chandra said that reports suggesting that he had personally borrowed money or had guaranteed loans worth 22,000 crore rupees are incorrect. Listen into his message.
2: नमस्कार. पिछले 2 दिनों से यानी सुभाष चंद्र को भी कुछ लोग इस देश के ऐसे लोगों से जोड़ के देख रहे हैं या दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को किसी न किसी प्रकार से निचोड़ा है, किसी न किसी प्रकार से उनके पैसे लेकर के स्वयं के लिए महल, जहाज सब कुछ खरीदे हैं. लेकिन मुझे पता है और मुझे विश्वास है, जो प्यार, जो शुभेच्छा आप सब लोगों ने मुझे दी है, उसके कारण से हमारे ग्रुप ने जो मुसीबत हम पर 24 जनवरी 2019 को आई, एसेट और लायबिलिटी मिसमैच होने के कारण, और उस दिन मैंने अपने मन से मेरे लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने एक ओपन लेटर सब आप लोगों को लिखा, देश के सिस्टम को लिखा, बैंकिंग सिस्टम को भी लिखा, और उसमें कहा मैंने कि मैंने कुछ गलतियां की हैं. शायद मैं पहला ही व्यक्ति था जिसने, मुझे नहीं लगता, और शायद आखिरी अब तक के इतिहास में मैं ही अकेला व्यक्ति हूं जिसने अपनी गलतियां मानी हैं. दूसरा कोई कॉरपोरेट वाला व्यक्ति ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने गलती मानी हो. और मैंने कहा कि भाई मैं सिस्टम का पूरा पैसा चुकाऊंगा, और मेरे ग्रुप के जितनी बोरोइंग एंटिटीज हैं वो भी चुकाएंगे. और वो किया हम लोगों ने. वो मैंने सभी बोरोइंग एंटिटीज को फोर्स करके करवाया. फैमिली के भी एसेट्स बेचे, अपने एसेट्स बेचे, कंपनी जी बेच दी थी लगभग, कुछ हमने रखा नहीं. अपने घर तक को गिरवी किया, लेकिन सबका पैसा चुकाया. बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि एसएल ग्रुप ने सुभाष चंद्रा और उसकी फैमिली ने सब कुछ सबका चुकाया, अपना बेच के भी चुकाया। उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा जिन्होंने नहीं चुकाया। तो तब से ही ये बातें चली आ रही हैं और ये केवल अभी जो एनसीएलटी में हुआ उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको एक मिनट में, वो सच्चाई सही से नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। हमने कल एक प्रेस रिलीज इशू किया, उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं, लेकिन मैं सोचता था कि आपसे सीधी बात भी मैं करूं, आपको सीधा बताऊं, जिससे कि आप सबका जो प्रेम मेरे प्रति है वो बना रहे। और मुझे विश्वास है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मेरी जो रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी, क्योंकि सच्चाई दोस्तों अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं, प्रयास करते हैं, कि अल्टीमेटली वो सच्चाई छुप नहीं सकती। आखिरकार तो मनुष्य को अपना चेहरा खुद सवेरे शीशे में देखना होता है। मुझे पता होता है कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया। तो उस दिन लगभग 45,000 करोड़ का देनदारी हमारे पूरे ग्रुप पर थी, उसमें से 43,000 करोड़ लगभग हमने चुकाया है। बाकी जो 2,000 करोड़ कहीं कंपनियों की जिनके एसेट लायबिलिटीज में गड़बड़ थी और थी, उस वजह से वो रुका है। ये जो विषय एनसीएलटी में हुआ तो वो केवल और केवल मैंने पर्सनल गारंटीज कुछ लेंडर्स को साइन करके दी थी और मुझे नहीं पता क्यों, पर कुछ लेंडर्स के पूरे पैसे भी चुका दिए गए थे, लेकिन उन्होंने भी एनसीएलटी में अपने क्लेम दाखिल किए। किसी कारण से किए होंगे, होने नहीं चाहिए थे। बहुत से केसेस ऐसे हैं, ये जो टोटल क्लेम 22,000 करोड़ रुपया लोग बोलते हैं, केवल 3,900। और जब हमारे ग्रुप की टोटल देनदारी 45,000 की है, 42,000 उसमें से दे दिया गया, 43,000, 2,000 बचा, तो बाकी 3,900 कहां से आ गया। चलो खैर जो भी है वो आया भी। इसमें से कभी 2,000 करोड़ ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने कभी पर्सनल गारंटी इन्वोक भी नहीं की, उन्होंने भी क्लेम दाखिल किया। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कोर्ट ने लगाए थे उन्होंने सबका क्लेम स्वीकार कर लिया। और दोस्तों उसमें से भी 620 करोड़ का क्लेम हमने सेटल किया है, जो बोरोइंग एंटिटीज हैं उन्होंने। कुछ 1100 करोड़ के लगभग अभी भी ऑफर लैंडर्स के पास पड़ी हुई हैं। तो हमारे ग्रुप की एंटिटीज सब लोग कमिटेड हैं हर एक का एक एक पैसा चुकाने में, मुझे ये है। और यही बुजुर्गों ने सिखाया है कि जिसका देना है उसको दिया जाए। हमने बहुत से पैसे लेने भी हैं, कई जगह पे फंसे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे स्टेट गवर्नमेंट से पड़े हुए हैं लेने के लिए, उसके पीछे लगे हैं हम। कुछ एक दो प्रॉपर्टी और हैं जो बेची जानी है, उस वजह से ही आज जी वापिस हमने 20% के लिए एक फैमिली ने अपने पैसे इकट्ठे करके लिया है। जहां तक मेरा निजी प्रश्न है, ये भी एक लांछन लगाया गया कि मेरे पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी जब हमने लोन लिया, लेकिन बाद में हमने कुल 31 करोड़ रुपए की दिखाई। अब ये भी एक मिथ है जो किसी ने चला के रखा है। कहीं किसी ने दिया ग्रुप की जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी उसको ले लिया, उसको मेरा निजी संपत्ति के रूप में दिखा दिया। 45,000 करोड़ रुपया नेटवर्थ है सुभाष चंद्र की, ऐसा बताया 2017 में। जबकि मैं 2016 में जब राज्यसभा का सदस्य बना तो उसमें वहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है और डिक्लेयर किया, उसमें मेरी नेटवर्थ थी 39 करोड़ 79 लाख और समथिंग। जब 2016 में मैं 39 करोड़ 60-70 लाख डिक्लेयर कर रहा हूं तो 2017 में वो 45,000 करोड़ कैसे बन जाएगी? तो ये सारी चीजें कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई जो है वो फेल करेगी। मैं बल्कि आपके माध्यम से बैंकिंग सिस्टम को, आज इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर को और बैंकिंग सेक्रेटरी इत्यादि को भी ये कहना चाहूँगा कि आप किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को लगाइए, उनको इतना ही सवाल पूछिए कि भाई इस ग्रुप का जब इन्होंने पहली बार फाइनेंशियल मार्केट में डिफॉल्ट किया उस समय कितना इनकी बोरोइंग थी और कितना इन्होंने अब तक पे किया। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आज मैं आपसे ठीक हंस के साधारण रूप से बात कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की तरह से बात नहीं कर रहा जिसका सब कुछ चला गया हो, जो आखिरी 6.5 करोड़ रुपया बचा है मेरे पास वो भी इस अनुसार पे करना पड़ेगा। एक छोटा रेजिडेंशियल मकान है उसको मैंने पार्टली भाड़े पे दिया, उसकी इनकम से मैं अपना खर्चा चला रहा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है दोस्तों। और फिर कमाऊंगा, पायनियर हूँ, अच्छे काम नए काम करना जानता हूँ, आगे भी करूँगा। अभी तो फिलहाल तो एक मैंने स्विट्जरलैंड में मेरे मित्र हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके यहाँ सर्विस करने का मैंने एक प्लान किया है, डिटेल मैं दूंगा आपको आने वाले एक दो हफ्ते में। उनकी इन्वेस्टमेंट भारत में और कहीं पे भी कुछ भी होगी तो वो देखूंगा, जिससे कि अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश कर सकूं। और आवश्यक ये भी है कि कहीं ना कहीं परिवार से 4 करोड़ रुपया उधार लेके उसको भी अपने किसी न किसी स्टार्टअप्स में और में लगाएंगे जो कि आगे बढ़ सकें, आगे वापिस अपना जो खोया हुआ अतीत एक सक्सेसफुल पायनियर और जिसने नए नए बिजनेस इस देश में शुरू किए, 8,000 परिवारों को रोजगार दिया, इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। मुझे ध्यान में आता है कि ये 50-52 साल के मेरे वर्किंग लाइफ में मैंने कम से कम फाइनेंशियल सिस्टम को 60-70 हज़ार करोड़ का ब्याज दिया होगा, लेकिन कमाया भी, आगे भी बढ़े। व्यक्ति 17 रुपए लेके निकला, एक समय में इस देश का वन ऑफ द रिचेस्ट टॉप भी नाम आया, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। और आज सब कुछ चला गया, उसका कोई दुख नहीं है। तो मैं केवल और केवल आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी

0: says Britain could face strikes on military installations.
1: Repeatedly warned that the response to Ukrainian strikes using British weapons on Russian territory could target any British military facilities and equipment, whether in Ukraine or beyond. Those responsible for war crimes, including those committed against our country's civilian population, will be punished in accordance with their actions. Inescapable retribution awaits their accomplices and instigators, and we urge all residents of the United Kingdom to reflect on the inevitable, catastrophic consequences of their authorities' hostile actions.
0: Romania and Poland have reported Russian-origin drones entering its airspace. NATO has condemned the airspace violations. Moscow, however, has denied targeting NATO nations. Russia says it is fighting Ukraine. Britain says it is helping Ukraine. NATO says its members must be protected. And Ukraine is increasingly capable of taking the fight deep into Russian territory. The result is a dangerous chain reaction. A Ukrainian drone crosses into Russia. A Western missile hits deeper. Russia retaliates against Ukraine. A drone or fragment crosses into NATO airspace. And suddenly, a war that began in Ukraine creates pressure far beyond Ukraine.
2: SL Group Chairman Dr. Subhash Chandra has hit out at businessman Mukesh Ambani and his network news channel CBC TV 18 for spreading false news. This after a piece of news item appeared in CNBC TV 18 alleging that a personal liability of 22,000 crore rupees was settled for 6.5 crore rupees in a case in the NCLT. Dr. Chandra said reports suggesting that he had borrowed money and had guaranteed loans worth 22,000 crore rupees are incorrect.
3: TV 18 group समूह जिसमें CNBC भी आता है, उन्होंने ही ये गलत बात पब्लिश करना शुरू की. 22,000 करोड़ सुभाष जी का कर्जा 6.5 crore में NCLT ने पास कर दिया. कल उनके चीफ एडिटर साहब को एक कॉमन एक मित्र ने फोन भी किया, कहा भाई ये क्यों कर रहे हो आप, गलत न्यूज देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी. उस बेचारे ने यही कहा कि मुझे तो ऊपर से निर्देश है, जो निर्देश है मुझे करना पड़ेगा. अब ये बात जब पता लगी तो मैंने कल शाम को मुकेश जी अंबानी को फोन भी किया. उनको पता नहीं फोन मेरा मिला नहीं मिला, मिलता है अक्सर, फोन भी आ जाता है, अभी फोन नहीं आया. सुबह मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है, उन तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपकी और जनता की अदालत में अपना विषय रख देना चाहिए, उसके बाद जो होगा. उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा, इन्वेस्टको नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे उनके साथ मिलके हथियाना चाहा. बट मुकेश जी प्लीज स्टॉप द रॉन्ग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मी पर्सनली एंड माय ग्रुप कंपनी. आई डोंट ओन एनीथिंग इन दैट. इनफैक्ट आई डोंट ओन एनीथिंग नाउ आफ्टर इम्प्लीमेंट NCLT order. आप तो धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं, बहुत ही वो सुलझे हुए इंसान थे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, आपके पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैं तो खाली हो चुका हूं, मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं. आपके पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए. तो एक बार फिर आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये सब अपने लोगों को रोकिए. मेरी इतनी मुसीबत में मैंने उनसे उस सरकार से कभी कुछ

0: Listening to his message.
1: Namaskar. पिछले दो दिनों से मुझे यानी सुभाष चंद्रा को भी कुछ लोग इस देश के ऐसे लोगों से जोड़ के देख रहे हैं या दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को किसी न किसी प्रकार से निचोड़ा है, किसी न किसी प्रकार से उनके पैसे लेकर के स्वयं के लिए महल, जहाज सब कुछ खरीदे हैं। लेकिन मुझे पता है और मुझे विश्वास है, जो प्यार, जो शुभेच्छा आप सब लोगों ने मुझे दी है, उसके कारण से हमारे ग्रुप ने जो मुसीबत हम पर 24 जनवरी 2019 को आई, एसेट और लायबिलिटी मिसमैच होने के कारण, और उस दिन मैंने अपने मन से मेरे लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने एक ओपन लेटर सब आप लोगों को लिखा, देश के सिस्टम को लिखा, मैंने कुछ गलतियां की हैं, शायद मैं पहली बार गलतियां मानी, मुझे नहीं लगता, और शायद आखिरी अब तक के इतिहास में मैं ही अकेला व्यक्ति हूं जिसने अपनी गलतियां मानी हैं। दूसरा कोई कॉरपोरेट वाला व्यक्ति ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने गलती मानी हो। और मैंने कहा कि भाई मैं सिस्टम का पूरा पैसा चुकाऊंगा और मेरे ग्रुप के जितनी बोरोइंग एंटिटीज हैं वो भी चुकाएंगे, और वो किया हम लोगों ने। वो मैंने सभी बोरोइंग एंटिटीज को फोर्स करके करवाया, फैमिली के भी एसेट्स बेचे, अपने एसेट्स बेचे, कंपनी जी बेच दी थी लगभग, कुछ हमने रखा नहीं, अपने घर तक को गिरवी किया, लेकिन सबका पैसा चुकाया। बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि एक उदाहरण बन जाएगा कि एसएल ग्रुप ने, सुभाष चंद्रा और उसकी फैमिली ने सब कुछ सबका चुकाया, बेच के भी चुकाया। उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा जिन्होंने नहीं चुकाया। तो तब से ही ये बातें चली आ रही हैं, और ये केवल अभी जो एनसीएलटी में हुआ उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको एक मिनट में, वो सच्चाई सही से नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। हमने कल एक प्रेस रिलीज इशू किया, उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं, लेकिन मैं सोचता था कि आपसे सीधी बात भी मैं, आप सबका जो प्रेम मेरे प्रति है वो बना रहे हैं, और मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मेरी जो रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी, क्योंकि सच्चाई तो अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं, प्रयास करते हैं, कि अल्टीमेटली वो सच्चाई छुप नहीं सकती। आखिरकार तो मनुष्य को अपना चेहरा खुद सवेरे शीशे में देखना होता है। मुझे पता होता है कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया। तो उस दिन लगभग 45,000 करोड़ का देनदारी हमारे पूरे ग्रुप पर थी, उसमें से 43,000 करोड़ लगभग हमने चुकाया है, बाकी जो 2,000 करोड़ कहीं कंपनियों की जिनके

अभी तो फिलहाल तो एक मैंने स्विट्जरलैंड में मेरे मित्र हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके यहाँ सर्विस करने का मैंने एक प्लान किया है। डिटेल में दूंगा आपको आने वाले एक दो हफ्ते में। उनकी इन्वेस्टमेंट भारत में और कहीं पे भी कुछ भी होगी तो वो देखूंगा, जिससे कि अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश कर सकूं। और आवश्यक ये भी है कि कहीं ना कहीं 2-4 करोड़ रुपया उधार लेके उसको भी अपने किसी न किसी स्टार्टअप्स में और में लगाएंगे, जो कि आगे बढ़ सकें, आगे वापस अपना जो खोया हुआ अतीत, एक सक्सेसफुल पायनियर और जिसने नए नए बिजनेस इस देश में शुरू किए, 8,000 परिवारों को रोजगार दिया, इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। मुझे ध्यान में आता है कि ये 50-52 साल के मेरे वर्किंग लाइफ में मैंने कम से कम फाइनेंशियल सिस्टम को 60-70 हज़ार करोड़ का ब्याज दिया होगा, लेकिन कमाया भी, आगे भी बढ़े। जो व्यक्ति 17 रुपये लेके निकला, एक समय में वन ऑफ द रिचेस्ट टॉप 10% में भी नाम आया, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। और आज सब कुछ चला गया, उसका कोई दुख नहीं है। तो मैं केवल और केवल आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी की बहकावे में मत आइए। गलत व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे दुनिया भर की बातें मेरे बारे में जो कही जा रही हैं, उनको वेरीफाई करिए। और मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे, मेरा तो सब कुछ ओपन है, मुझे मेल करिए, आपके प्रश्नों मेरे से पूछिए सीधा, मैं आपको जवाब दूंगा। इसके साथ ही आपने अपना अटेंशन मुझे दिया, मेरी इस वीडियो को, धन्यवाद। जय हिंद।

0: Well, we also wanted to understand what's the safety situation like for her and her team from where she's located at this moment. Listen to this.
1: No, there's no update on anybody at all. There are no updates on our members or any other members. There's no update on any other people who were accompanying us, like the Sherpas, the guides. There's absolutely no information as yet.
0: And while we're hearing and seeing reports of yet another flash floods-like situation developing in the area that has already been hit by the tragedy, we were curious to know about what Ma Gambhiri was able to pick from the ground, and this is what she had to share.
1: Yes, we are in Tibet right now, and currently everybody is safe. Safety is definitely important, but right now we are all involved in finding out more about the members who have gone missing, and Sadhguru himself, who's here with us, and he's leading the entire effort, in fact, and we are guided by him, and we are reaching out to various agencies, various offices, various embassies in India, in China, and in Nepal, and offices across the world, whoever can help us.
0: Ma Gambhiri also told us about what the authorities are telling the residents in the area, as there have been reports that new flash flood-like situations are developing in the area again.
1: Right now, that whole area has been cordoned off, and we have moved all our people far away from that area. We were told that it was overflowing once again, and there were reports that it is not so. It did not happen, in fact. So there's definitely something happening there. There's definitely a possibility of another flood happening, but we have made sure that all our team members are moved away from that region.
0: We also asked her about the state of communication and in the region, and if she has been able to stay in touch with her team and gather more information from across the region.
1: The region where we are now, yes, we are very well connected. But the region where this happened, there's no connectivity even now. The communication is happening differently among the government bodies, but there's no connectivity as yet.
0: And lastly, we asked Ma Gambhiri if she has an appeal to make to the people, and this is what she had to say.
1: I think the Indian government has been very, very helpful. They have been providing us all the needed support as much as they can. My appeal would be if we could get some information about this, our participants. We had 77 participants on the China side, and we had 3 on the Nepal side. And we have no information whatsoever on all of these 80 people. My only hope is that we would get some information soon, because it's not just us. There are 80 families waiting on the other side.
0: Moving on, SL Group Chairman Dr. Subhash Chandra has categorically disputed several figures and claims that have appeared in certain sections of the media regarding the NCLT case. Now, he has called it an attempt to tarnish his image and said it is being done with purpose by some people. Dr. Chandra said that reports suggesting that he had personally borrowed money or had guaranteed loans worth 32,000 crore rupees are incorrect. Listen into his message.
2: Namaskar. Two dino se mujhe yani Subhash Chandra ko भी कुछ लोग इस देश के ऐसे लोगों से जोड़ के देख रहे हैं या दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को किसी न किसी प्रकार से निचोड़ा है, किसी न किसी प्रकार से उनके पैसे लेकर के स्वयं के लिए महल, जहाज सब कुछ खरीदे हैं. लेकिन मुझे पता है और मुझे विश्वास है, जो प्यार, जो शुभेच्छा आप सब लोगों ने मुझे दी है उसके कारण से हमारे ग्रुप ने जो मुसीबत हम पर 24 जनवरी 2019 को आई, एसेट और लायबिलिटी मिसमैच होने के कारण, और उस दिन मैंने अपने मन से मेरे लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने एक ओपन लेटर सब आप लोगों को लिखा, देश के सिस्टम को लिखा, बैंकिंग सिस्टम को भी लिखा, और उसमें कहा मैंने कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, शायद मैं पहला ही व्यक्ति था जिसने अपनी गलतियां मानी, मुझे नहीं लगता, और शायद आखिरी अब तक के इतिहास में मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ जिसने अपनी गलतियां मानी हैं। दूसरा कोई कॉरपोरेट वाला व्यक्ति ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने गलती मानी हो। और मैंने कहा कि भाई मैं सिस्टम का पूरा पैसा चुकाऊंगा, और मेरे ग्रुप के जितनी बोरोइंग एंटिटीज हैं वो भी चुकाएंगे, और वो किया हम लोगों ने। वो मैंने सभी बोरोइंग एंटिटीज को फोर्स करके करवाया, फैमिली के भी एसेट्स बेचे, अपने एसेट्स बेचे, कंपनी जी बेच दी थी लगभग, कुछ हमने रखा नहीं, अपने घर तक को गिरवी किया, लेकिन सबका पैसा चुकाया। बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक उदाहरण बन जाएगा कि एसएल ग्रुप ने, सुभाष चंद्रा और उसकी फैमिली ने सब कुछ सबका चुकाया, अपना बेच के भी चुकाया। उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा जिन्होंने नहीं चुकाया। तो तब से ही ये बातें चली आ रही हैं, और ये केवल अभी जो एनसीएलटी में हुआ उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको एक मिनट में, वो सच्चाई सही से नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। हमने कल एक प्रेस रिलीज इशू किया, उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं, लेकिन मैं सोचता था कि आपसे सीधी बात भी मैं करूं, आपको सीधा बताऊं, जिससे कि आप सबका जो प्रेम मेरे प्रति है वो बना रहे। और मुझे विश्वास है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी, क्योंकि सच्चाई दोस्तों अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं, प्रयास करते हैं, अल्टीमेटली वो सच्चाई छुप नहीं सकती। आखिरकार तो मनुष्य को अपना चेहरा खुद सवेरे शीशे में देखना होता है। मुझे पता होता है कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया। तो उस दिन लगभग 45,000 करोड़ का देनदारी हमारे पूरे ग्रुप पर थी, उसमें से 43,000 करोड़ लगभग हमने चुकाया है, बाकी जो 2,000 करोड़ ही कंपनियों की जिनके एसेट लायबिलिटीज में गड़बड़ थी और थी, उस वजह से वो रुका है। ये जो विषय एनसीएलटी में हुआ तो वो केवल और केवल मैंने पर्सनल गारंटीज कुछ लेंडर्स को साइन करके दी थी, और मुझे नहीं पता क्यों कुछ लेंडर्स के पूरे पैसे भी चुका दिए गए थे, लेकिन उन्होंने भी एनसीएलटी में अपने क्लेम दाखिल किए, किसी कारण से किए होंगे, होने नहीं चाहिए थे। बहुत से केसेस ऐसे हैं, ये जो टोटल क्लेम जो 22,000 करोड़ रुपया लोग बोलते हैं, केवल 3,900 करोड़ के लगभग था, और जब हमारे ग्रुप की टोटल देनदारी 45,000 की है, 42,000 उसमें से दे दिया गया, 43,000, 2,000 बचा, तो बाकी 3,900 कहाँ से आ गया? चलो खैर जो भी है वो आया भी। इसमें से कर भी 2,000 करोड़ ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने कभी पर्सनल गारंटी इन्वोक भी नहीं की, उन्होंने भी क्लेम दाखिल किया। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कोर्ट ने लगाए थे उन्होंने सबका क्लेम स्वीकार कर लिया। और दोस्तों उसमें से भी 620 करोड़ का क्लेम हमने सेटल किया है, जो बोरोइंग एंटिटीज हैं उन्होंने। कुछ 1100 करोड़ के लगभग अभी भी ऑफर लैंडर्स के पास पड़ी हुई हैं। तो हमारे ग्रुप की एंटिटीज सब लोग कमिटेड हैं हर एक का एक एक पैसा चुकाने में। मेरा ये मानना है और यही बुजुर्गों ने सिखाया है कि जिसका देना है उसको दिया जाए। हमने बहुत से पैसे लेने भी हैं, कई जगह पे फंसे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे स्टेट गवर्नमेंट से पड़े हुए हैं लेने के लिए, उसके पीछे लगे हैं हम। कुछ एक दो प्रॉपर्टी और हैं जो बेची जानी है, उस वजह से ही आज जी वापिस हमने 20% के लिए एक फैमिली ने अपने पैसे इकट्ठे करके लिया है। जहां तक मेरा निजी प्रश्न है, ये भी एक लांछन लगाया गया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी जब हमने लोन लिया, लेकिन बाद में हमने कुल 31 करोड़ रुपए की दिखाई। अब ये भी एक मिथ है जो किसी ने चला के रखा है। कहीं किसी ने इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी उसको ले लिया, उसको मेरा निजी संपत्ति के रूप में दिखा दिया। 45,000 करोड़ रुपया नेटवर्थ है सुभाष चंद्र की, ऐसा बताया 2017 में। जबकि मैं 2016 में जब राज्यसभा का सदस्य बना तो उसमें वहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है और डिक्लेयर किया, उसमें मेरी नेटवर्थ थी 39 करोड़ 379 करोड़ 70 लाख और समथिंग। जब 2016 में मैं 39 करोड़ 60-70 लाख डिक्लेयर कर रहा हूँ तो 2017 में वो 45,000 करोड़ कैसे बन जाएगी? तो ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई जो है वो प्रिवेल करेगी। आपके माध्यम से बैंकिंग सिस्टम को, आज इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर को और बैंकिंग सेक्रेटरी इत्यादि को भी ये कहना चाहूँगा कि आप किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को लगाइए, उनको इतना ही सवाल पूछिए कि भाई इस ग्रुप का जब इन्होंने पहली बार फाइनेंशियल मार्केट में डिफॉल्ट किया उस समय कितना इनकी बोरोइंग थी और कितना इन्होंने अब तक पे किया। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आज मैं आपसे ठीक हंस के साधारण रूप से बात कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की तरह से बात नहीं कर रहा जिसका सब कुछ चला गया हो। जो आखिरी 6.5 करोड़ रुपया बचा है मेरे पास वो भी अब इस प्लान के अनुसार पे करना पड़ेगा। एक मेरा छोटा रेजिडेंशियल मकान है, पार्टली भाड़े पे दिया, उसकी इनकम से मैं अपना खर्चा चला रहा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है दोस्तों। और फिर कमाऊँगा, पायनियर हूँ, अच्छे काम नए काम करना जानता हूँ, आगे भी करूँगा। अभी तो फिलहाल तो एक मैंने स्विट्जरलैंड में मेरे मित्र हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके यहाँ सर्विस करने का मैंने एक प्लान किया है, डिटेल में दूंगा आपको आने वाले एक दो हफ्ते में। उनकी इन्वेस्टमेंट भारत में और कहीं पे भी कुछ भी होगी तो वो देखूंगा, जिससे कि अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश कर सकूं। और आवश्यक ये भी है कि कहीं ना कहीं परिवार से دو چار کروڑ روپیہ ادھار لے کے اس کو بھی اپنے کسی نہ کسی

स्टार्टअप्स में और में लगाएंगे तो आगे बढ़ सकें, आगे वापस अपना जो खोया हुआ अतीत, एक सक्सेसफुल पायनियर और जिसने नए नए बिजनेस इस देश में शुरू किए, 8,000 परिवारों को रोजगार दिया, इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, मुझे ध्यान में आता है कि ये 50-52 साल के मेरे वर्किंग लाइफ में मैंने कम से कम फाइनेंशियल सिस्टम को 60-70 हज़ार करोड़ का ब्याज दिया होगा, लेकिन कमाया भी, आगे भी बढ़े। जो व्यक्ति 17 रुपए लेके निकला, एक समय में इस देश का वन ऑफ द रिचेस्ट टॉप 10 पर्सन भी, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, और आज सब कुछ चला गया उसका कोई दुख नहीं। तो मैं केवल और केवल आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी की बहकावे में मत आइए। गलत व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे दुनिया भर की बातें मेरे बारे में जो कही जा रही हैं उनको वेरीफाई करिए, और मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे, मेरा तो सब कुछ ओपन है, मुझे मेल करिए, आपके प्रश्न और मेरे से पूछिए सीधा, मैं आपको जवाब दूंगा। इसके साथ ही आपने अपना अटेंशन मुझे दिया, मेरी इस वीडियो को, इस स्टेटमेंट को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, धन्यवाद। जय हिंद।